0: एंड व्हाट अमेजिंग सॉन्ग. सो नाइट शिफ्ट के इस खूबसूरत सफर के साथ जो लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम. तो करते रहते हैं, अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कंधों पर उठाई होती है, लेकिन इस सफर की खूबसूरती आपके लिए कुछ लाजवाब गीतों के साथ. वो कहते हैं ना कि जीवन के कुछ लम्हों को याद करने के लिए इन गानों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब भी सहारा लेते हैं आपके साथ मिल मिलकर आपके खूबसूरत डेडिकेशन को अपने सिलेक्शन के साथ मिल मिला लेते हैं. एनीवेज गाना तैयार है आपके लिए ये खूबसूरत सफर की खूबसूरती के साथ. लेट्स गो फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.
1: La radio arc-en-ciel. Radio Plus.
2: Votre radio préférée.

0: वैसे तो आपके लिए सारे ही सारे गाने बड़े ही लाजवाब ट्रेमेंडस होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के कुछ बातों को गानों के साथ मिल मिलाकर कुछ शेयर कर लेते हैं ब्यूटीफुल सिलेक्शन के साथ। जी हाँ, ऐसे ही होता है, हम जीवन के सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हम बिल्कुल आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं होता क्या गया हमारे साथ। कुछ ऐसे खूबसूरत मेमोरीज का साया आज भी चल रहा है। सो मोहब्बत के वो जिक्र, वो तो हमेशा हमारे पास होता है। मोहब्बत दिल से हो जाती है, जिसको भी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है, और वो बेरंग सी जिंदगी जब गुल से गुल गुलजार, रंग से रंगीन और बेहतर से बेहतरीन हो जाए। सो आपकी जिंदगी के खूबसूरत गाने जब भी लग जाते हैं, अगर इंसान आपके पास है, सो देन डेफिनेटली आप लगे हैं। अगर ना हो तो मेमोरीज याद करके कुछ ना कुछ मुस्कान चेहरों पर खड़ी हो जाती है।
1: Radio Plus, music and news station.

0: सो ऑल टाइम माय फेवरेट सॉन्ग, लेकिन चलिए सफर तो चलता रहता है, रात की तन्हाई का आलम होता है और ये 4 आवर्स का सफर बहुत खूबसूरत गुजर ही जाता है। कुछ ऐसे घड़ियों को भी महसूस किया जाता है कि कुछ ट्रैक्स हमने बहुत जमाने से नहीं सुने होते, स्पेशली आपके डेडिकेशंस के साथ सुन लेते तो ऐसे हमारे सिलेक्शन के साथ भी बहुत जमाने के वो खूबसूरत लम्हों को महसूस करने का एक बहाना बन जाता है और वो ट्रैक जो आपने नहीं सुने होते वो भी आप सुन लेते हैं। लेकिन चले ये खूबसूरत रात का सफर हमारे साथ ही चल रहा है। अभी के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारा ट्रैक है, सो लेट्स गो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। चुरते रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून।
1: 24 sur 24, 7 jours sur 7, on vous passe le meilleur de la musique.
2: Je Kiffe, Radio Kiffe, écoutez, ou vous tendez.

0: और रात के इस खूबसूरत म्यूजिक के साथ, इस सफर के साथ, टेंडी टेंडी हवाओं के साथ, वो कहते हैं ना कि इस वक्त अगर कोई काम कर रहे नाइट शिफ्ट के साथ जनाब, वो कहते हैं कि जिंदगी के हर एक लम्हे को तो हम आपके साथ शेयर कर लेते, लेकिन चले हर एक लम्हे को एंजॉय करते जाइए। ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, घरों से सुन रहे हैं, अपनों के साथ या किसी स्पेशल इंसान के साथ या दुनिया के जिस कोने से सुन रहे हैं रेडियो प्लस पर, साथ में बातें जाइए जमाल का, स्टे ट्यून
1: रेडियो प्लस पर। प्लस दे सेंसेशन,
2: प्लस दे सेंसेशन।

मौसम बदल चुका है, समर का समाज चल रहा है, समर हो विंटर हो जो भी आपका फेवरेट पसंदीदा सीजन चल रहा हो, लेकिन वो खूबसूरत यादें, वो बातें, वो जिक्र, वो फिक्र जो आपने कभी अपने जमाने में किसी न किसी के साथ जरूर गुजारे होते हैं, सो वो याद करने के लिए कभी न कभी इन गानों का सहारा तो ले लेते हैं, लेकिन कभी दिल की बातों को भी महसूस किया जाता है। लेकिन चले रात का खूबसूरत मौसम ठंडी हवाओं के साथ कदम मिलाते चाहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ जमाल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: एंड इस एक्सट्रीमली रोमांटिक गाने के साथ कुछ ना कुछ बातें तो मोहब्बत की होती रहती है, दिन रात शाम दोपहर हर वक्त हम अपनी जिंदगी के कुछ ना कुछ जगहों पर मसरूफ रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बत की दास्तानें ऐसी होती है जो हमारे पीछे भागती रहती है। एंड एक्सट्रीमली रोमांटिक कुछ ऐसे गानों को सुनकर आपके दिल के तार भी हिल जाते हैं, जिस तरह के गिटार के तार होते हैं इसी तरह दिल के भी तार होते हैं। एंड किसी ने खूब फरमाया कि अ रिलेशनशिप विदाउट रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड लव इज लाइक ए कार विदाउट व्हील्स। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चले लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सॉन्ग, एक बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही वंडरफुल ट्रैक, अमेजिंग मूवमेंट्स के साथ। स्टे विद अस, स्टे ट्यून।
1: Écoutez votre radio.
2: C'est la pause plaisir
1: par excellence.
2: Radio Plus.

सो अमेजिंग नाइट के साथ, नाइट लाइफ के साथ अभी के लिए लेट्स गो फॉर डेडिकेशन। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सो नेक्स्ट गाना इनके लिए डेडिकेट करेंगे जिन्होंने इनकी फरमाइश की है, लेकिन इनका है आज जन्मदिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी जिंदगी का जन्मदिन, आपकी जिंदगी का सालगिरह आप ही को मुबारक हो। लेकिन चलिए खूबसूरत फरमाइश इन्हीं के नाम।

0: सो नाइट लाइफ आपके लिए मस्त गाने, फ्रेंच गाने, हिंदी गाने और साथ साथ में लोकल गीत्स, हॉलीवुड के कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, लेकिन कुछ स्पेनिश ट्रैक स्पेशली आपके डेडिकेशंस के साथ। वो कहते हैं ना कि जब भी समर आते हैं या विंटर आते हैं, हर इंसान का एक मनपसंद पसंदीदा एक खूबसूरत सीजन होता है, विंटर होता है या समर होता है, जो भी होता है, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ ऐसे गीत लग जाए स्पेशली आपकी फरमाइशों के साथ या हमारी सिलेक्शन के साथ। सो वो रात, दिन, दोपहर, शाम, हर वक्त हमारे लिए बड़ी अमेजिंग फीलिंग्स के साथ भर जाती हैं। सो ऐसे खूबसूरत लम्हों को तो हम एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन चले रात का समय चल रहा है, बेशुमार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड बेशुमार खूबसूरत फरमाइशों के साथ, बट आई विल डू माई बेस्ट कि आपकी फरमाइशें डेफिनेटली डेफिनेटली आप तक जरूर पहुंचाएं। एक खूबसूरत गाना इस वक्त तैयार है, सो लेट्स गो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग विद अस। जुड़ते रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून।
1: Radio Plus, le meilleur de la musique. Radio Plus, music and news.

0: It's only a chosen few that do what we do.
1: और आप इस वक्त हमारे साथ सुन रहे हैं ऑल टाइम माय फेवरेट सॉन्ग. लेकिन चले इसके साथ साथ एक और खूबसूरत ट्रैक आप ही के लिए तैयार है. जितने भी सुनने वाले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पेशली उनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, जुड़ते रहिए हमारे साथ. स्टे ट्यून्ड.
2: 24 sur 24, 7 jours sur 7, on vous passe le meilleur de la musique.
3: Je Plus, Radio Plus, écoutez ou vous tendez.

0: खूबसूरत रात की डेडिकेशंस के साथ अभी के लिए लेट्स गो फॉर अ डेडिकेशन। आज है हमारे साथ जुड़ चुकी है शिवानी और इनका है आज वेडिंग एनिवर्सरी। सो वो कहते हैं ना कि दो दिल एक जान, जब एक दिन पर बन जाए सो उनके लिए कुछ खास ट्रैक्स हमारे लिए बड़े अहम बन जाते हैं और हर किसी को चाहिए कि उनको विश करे कुछ ऐसे खूबसूरत मौकों पर। लेकिन चले मौका भी है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके और इनके खूबसूरत फरमाइश हमारे पास ही है। सो लेट्स गो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। स्टे विद अस, स्टे ट्यून।
1: Radio Fluxus.

0: एंड वंडरफुल मैशअप इस खूबसूरत सफर के साथ रेडियो प्लस पर आपके लिए. जी हैं, इस नाइट जर्नी के साथ, नाइट लाइफ के साथ.
1: Vous êtes des milliers à nous écouter.
2: Et maintenant, encore un morceau comme vous.
1: Merci à chacun.

0: और इस ब्यूटीफुल गीत के साथ चले अभी के लिए इट्स टाइम टू से गुड बाय. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. जमाल को इजाजत दीजिएगा. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर डेडिकेशंस, फॉर योर फोन कॉल्स. हर एक चीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मैसिबू को. मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. जाने का समय हो चुका है. जमाल को इजाजत दीजिएगा. गुड बाय.
1: Radio Plus.